और अब नाराज खुदा कहे करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मोफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

0: अरे शाह है जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता।
1: आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप इससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे।

किसका गुस्सा है भला, जिससे आए प्यार। किसका गुस्सा है भला, जिससे आए प्यार। ऐसा दुश्मन हाय रे,

जी फिल्म आमने सामने में से निकाले हैं। जी हाँ, आमने सामने में से निकाले हैं। निकिती सेफ ने सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश किए। क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार इस तरह से।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, वो एक लाइफ और है मेरे पास, त्रिदर्शन इनका, अलका याग्निक जी का। बस ये प्यारा लाइफ सुनिए, इस तरह से आ रहा है।

योर लाइफ रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए फॉन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में दूरदर्शन इन का अलका याग्निक जी का वर्ल्ड फोरम थिएटर है। उन दिनों कांग्रेस खबाओ नाम था। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो क्या ख्याल है, ये फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे। कौन नहीं देखा हुआ ये फिल्म, हरियाली और रास्ता 1962 शंकर जय किशन के साज पर।

हरियाली और रास्ता, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं। टाइटल सॉन्ग पेश किया गया ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकितिन त्वीन सस्तक का ये फिल्म में शंकर जय किशन के साथ पर लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग, क्या ख्याल है?

रोका कई बार मेरे दिल के अपने दिल की पसंद को, और ये शानदार गीत चला फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। या क्या बात है, ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब और आशा जी ने कितनी फाइफ तक होनी से 65 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और है ये।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत। चलिए एक गीत हम आओ प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल? हाँ इस तरह से सुमन कल्याणपुर है।

हाँ लता जी आपको सुनाए हैं, जी नहीं सॉरी सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए हैं चित्रगुप्त के साथ पर नहीं कहती 25 तक का ये गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये।

लाल छड़ी मैदान खड़ी, फिल्म जानवर निकेतन 65 शंकर जय किशन के साज पर है। तो लीजिए अब क्या ख्याल है, अगर जब मैं ये चला दूँ आपके लिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

दिल पुकारे आरे आरे लता जी और रफ़ी साहब एस दे बर्मन के साथ पर फिल्म जुअल थीफ्स में से निकाल कर हम पेश किए आप सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाक्य आपने सुने, बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला के नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए, आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफ़ी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं, लता जी है।

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज में हम पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूनी की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज में फिल्म आदमी में से निकालकर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी मुकेश, मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं, ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाए दुरमर, तो पीट पाट कर दुरम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म फिक्टोरिया तुन और द्री में से निकाल कर हमने पेश किए है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आरती बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुई सी मित 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी जी पी सिप्पी ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिल के ये फिल्म बनाए हैं फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निगेटिव फिर शस्तक का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात। फिल्म का नाम है सजना, सजना से भैले मुलाकात। फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर शस्त्र का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तोहार गोरिया। जैसे मैंने कहा निकली फिर से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर जो हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए, चांद की चांदनी गुलामों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म कहा या नॉन फिल्म कहा होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वाले श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। VVV.5FM.NL पर आप चून है, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो, रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश धाट।

0: दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो रेडियो।
1: भाई बहनों, किसी ने किया खूब कहा, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।

मित्रों, पानी को कस कर पकड़ोगे तो भी वो हाथ से छूट ही जाएगा। उसे बहने दीजिए, बहने दीजिए, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए मित्रों, तो जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव और तटस्थ होकर देखते रहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा, खुद ही बना लेगा।

भाई बहनों, नीम को कितना भी शहद में डुबो दीजिए, मगर उसका कड़वापन, उसका स्वाद कभी नहीं बदल सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है, उसके साथ कितना अच्छा करने पर भी वो आपको बुरा ही समझेगा, बुरा ही समझेगा।

दोस्तों, अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर ही समझ आती है। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री, इस भजन के माध्यम से आप आगे सुनें।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में।

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: very very nice, very very nice. सुनने को
1: सारेगामा कारवां, the perfect gift for you.
0: सुनने के लिए बहुत उकसत रही आप भी. आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए भी पेश हो रहा है

धुरंधर फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सैयारा से।

thun film Sayara Sanikala gaya hai. Mithun लेखक है, ये गीतकार और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आपने देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बियोस्कोप में भी इसको रिलीज किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो जरूर से वक्त बनाकर याद कर देखना। बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक खास है।

ये आंखें ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया के आवाज में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं। इसमें अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पछड़ जाओगे, अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज के, अरिजीत सिंह जी की आवाज में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

ऐसे कटे सजनी तेरे बिन सजना तेरे बिन तेरी याद सतावे, अरिजीत सिंह जी के आवाज़ में। अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत हैं।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्तजनों, प्रिय सुनने वालों, आप सबको हार्दिक से स्वागत है। एक शुभ प्रभात, इनहेल हुए मोर्ख, नमस्कार, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी, जिसे मैंने कहा राम राम, प्रणाम, नमस्कार।

सुबह के प्रोग्राम यहाँ से आपके लिए आरंभ किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से आपके लिए आरंभ किया जाता है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सोनल सभी मेंबर की ओर से आप सभी को एक शुभ दिवस कह रही हूँ। देन हाँग से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी हम सभी को एक शुभ दिवस कहते हुए हनुमान चालीसा के साथ यहाँ से आरंभ किया जाता है।

दनहा के रहने वाले श्रीमती लिरियन मोतीराम जी की तरफ से सुंदर शाम हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। सुरीनाम अली फोर्नो मैनकंडाम हुक इंदिरा गांधी वेग से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर इस खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में

अच्छे अच्छे अल्फाज इसमें जो भी नौतिहाल जी गायकर और सुना दी है, अगर हम गौर करें तो हाँ हाँ जरूर से हमारे रास्ता जो अंधेरा है उसमें हम उजाला ही पाएंगे। श्री नाम अली फोनो मैन कंडा मुख इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को प्रकट कर रहे हैं। देनहाग से श्रीमती लैन बाबू राम जी, श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से यहाँ से हम सुनेंगे।

मेरे भोले बाबा, सुंदर सा भजन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और वो भी दनाह के रहने वाली श्रीमती लहन बाबू राम जी की तरफ से। श्रीमती लहन बाबू राम जी की तरफ से आप सभी को एक शुभ प्रभात, एक खूबसूरत दिवस प्रकट किया जाता है। दनाख एक नुत स्रात नंबर दस से संस्था हिंदी प्रचार, जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देशों में है, श्रद्धा भक्ति के साथ

0: बच्चा स्कूल से निकला।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुंदर भजन पेश किया गया है दिनांक 1 अप्रैल 2010 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरुबीन के निर्देश में है। दिनांक मकाई 6 अप्रैल से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरीन अल खमेन हिंदू ऑनरवेज के तरफ से।

सुंदर सरस्वती माता के भजन यहाँ से हमने मिलकर श्रवण की है, किशोर की देवी सरस्वती माँ। पेश किया गया है दिनांक मकाईस रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनिंग अलखमेन हिंदू ऑनरवेज की तरफ से, रोटरडाम होगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे।

अति सुंदर अति सुंदर सुंदर शब्दों में यहाँ से हमको सुना दी है और पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों रोटरडैम होपफुली टेक्सास नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रेट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से श्री मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए हम सब के लिए ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है। Den Haag Leisgeveen Voorpark se Anand Arjun Sharma Anand Arjun Sharma Groothandel BV ke taraf se

अवश्य अवश्य, मैं बालक तो माता शेरावाली पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से। दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल ए ग्रोथ एंड फ्रूट। इनका मालिक जो है मेरे प्यारे सुनने वालों श्रीमान परशुराम मोहनलाल, इनके तरफ से ये सुंदर सा भजन यहाँ से मिलकर हम सभी ने श्रवण की है। आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर। ये मेरे प्यारे सुनने वालों एक बार फिर है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव। बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, और इनके तरफ से हम सुनेंगे

Avashya, avashya. मेरे माँ के बराबर कोई नहीं. पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों देना अखलास कफीन फोर पारक से बाओ एन ऑनर हाउस बद्रेव. बाओ एन ऑनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी. इनके तरफ से आप सभी के लिए पेश किया गया है और एक शुभ दिवस, एक मंगलमय दिवस, खुशियां भरे दिन हम सभी को लिए हम

0: कोमा में चला गया आपका बेटा, उसका हेलमेट टूटा।
1: मेरे सुमित की जिंदगी बहुत हाथों
2: हो जाएगा।

दिल छू जाने वाले लफ्ज इसमें जो मैं नौतियाल जी के भजन में है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सुंदर सुंदर भजन आपके लिए पेश किया गया है।

स्वस्तिर भवतु और हम सभी के मन में शांति रहे। पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों फाहर रेडियो के डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते आप जहां भी हो जैसे भी रहे आपको तमाम खुशियां खुश नसीबियां पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों भजन माला कार्यक्रम यहाँ से समाप्त होने को आ गए और देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़िया बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से हमने पेश किए हैं। जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो from the movie कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

कसम खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। अक्का याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

जाने से आए तेरे जाने से जाए, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे काली तेरी चुट्टी है परांदा तेरा लाल ने फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक इसी फिल्म से हमने ये गीत पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, गलत कहते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। तूतक तूतक तूतक तूतिया आई लव यू फ्रॉम द मूवी घर का चिराग।

अभी आप सुन रहे थे तू तक तू तक तू तक तूतिया, आई लव यू, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, याद आता नहीं है कब कहाँ। फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आपको सुनाने वाले हैं कंचन और नितिन मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, नितिन मुकेश के साथ में कंचन जी आप सभी को सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी मीठा शहर से हमने पेश किए हैं सुन ले मेरी लैला, यानी फिल्म का नाम है सुन मेरे लैला, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ विकी आई लव यू।

अभी आप सुन रहे थे ओ विकी आई लव यू फ्रॉम द मूवी सुन मेरे लैला से हमने पेश किए हैं। क्या आसमान गिर जाएगा दो चार घूंट हम पी ले तो, फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से, क्या आसमान गिर जाएगा जो चार घूंट हम पी ले तो। एक बहुत सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे पूछो ना यार क्या हुआ। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है बाबला और कंचन की आवाज़ में। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: बाबला और कंचन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। और दहिया मोरी लेले लेले नंदलाल अभी आप सुन रहे थे। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। और ये गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ख़ास करके उन सभी के वास्ते जिनका नाम निशा है। निशा
1: love you all.

फ्रॉम द मूवी क्रिश हमने पेश किए हैं। आपको सुनाने वाले थे सुन निगम और श्रेया घोषाल जी। एक बहुत सा सुंदर गीत चुनकर रखे हैं हम आप सभी के वास्ते। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप सुनेंगे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।

अभी आप सुन रहे थे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और फ्रॉम द मूवी मैंने दिल तुझको दिया, अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही रास्ते में है उसका घर। फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं आप सुनेंगे, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

उदित नारायण जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं, और म्यूजिक दिए हैं राजेश रोशन जी। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है कि बुरे लोगों की यानी बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है बुरे लोगों की बुराई को भूलकर उनमें अच्छाई तलाश की जाए। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जीत से हमने पेश किए है अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, ये सोच करके दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग और भी हैं। कुमार सानू आपको सुनाने वाले हैं चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फ्रॉम द मूवी सलामी से हम पेश करते हैं कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, आशा भोसले जी के साथ में कुमार शानू जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सलामी से हमने पेश किए हैं, हंसाते हो रुलाते हो। फ्रॉम द मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी होती है और ख्वाहिश तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है, एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभलने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। आज पहली बार दिल की बात की है, फ्रॉम द मूवी तेरी बार से आप सुनेंगे कुमार शानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

आपका याज्ञिक और कुमार शानू भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तेरी पार से, अभी आपने सुने हैं हम तुम्हारे हैं तुम्हारी सनम।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन, ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका रामसुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और अपवादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरे सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़न।
0: दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को 79 साल की उम्र में इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएँ पतो यानी सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानी क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानी आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सहूर का वफात हो गया है, जो ज़िंदगी में भी सुहानी ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और म्यूज़िक फॉर्मेट सी चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत का दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन ए नीर तो त्वेदक्स औद हाक वेख 28 दिन हाक शहर में। और भी मैयत का दीदार आप कर सकते हैं मानदक 11 मई 3 तो 11 ईर मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद मैयत 12:30 बजे यानि हल्फ इन जनाजा पढ़ने के बाद हल्फ तुई न्यू एकन दोइनन कंपफुल इस्तरात के कब्रिस्तान में तजीर व तफीन किया जाएगा। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार 79 साल की उम्र में बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएँ यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सत सहूर का वफात हो गया है, जो ज़िंदगी में नया ज़माना ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और सुहानी ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिकांत था और साथ ही साथ म्यूजिक फॉर्मेट से चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत से दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन देर 3 यूर तो फिर 3 यूर औद हाक वेख अख्तन तुन तक दिन हाक में। और मैयत का दीदार भी आप कर सकते हैं सोमवार मानदक 11 मई को 10 से 11 बजे तक मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई होनत 3 पर है। उसके बाद 12:30 बजे यानि हलफिन जनाजा पढ़ने के बाद हलफ तुई न्यू एक एन दैन कम्बरफुल इस रात में कब्रिस्तान में तजीद वर्तफीन किया जाएगा।

मालूमात के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-16-11-73-61 और एक तार और है 06-41-25-88-93. मैं दोहरा रहा हूँ 06-16-11-73-61 और 06-41-25-88-93. फाहुन हिंदुस्तानी सभी परिवार राम लखन और रिश्तेदार अब्दुल को यहाँ से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और मातम में शरीक है। सुनने वालों से निवेदन है और गुजारिश है कि ये खबर तक और आगे तक पहुँचा देने को। यहाँ तक था फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर रिश्तेदार अब्दुल का।

जब मुअज्जिन की अजानों से हो रहमत का नुज़ूल, बरसे तुर्बत पे मेरी गुलशन फिरदौस के फूल, रोज इस तरह चमकता रहे तुर्बत का नसीब, रोज इस तरह, हाँ रोज इस तरह चमक

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामजतन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश बी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

kala na jani uchini kala na jani jant sorsati manta dije humko apni aashirvaad तमाम रेडियो फहन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम से सियकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे, उसके बाद हमारा समाचार खत्म आने को होगा। तो हम चलते भैया, एक आदमी अपन ओतो चलावत एगो ट्रेन वाहन दिखिला फौतू पे चलावत गए है, मकानी कैसे अपन ओतो लेके तुतनी का बोले है तुतली फू कनाल में गोतरों में घुस गए भाई ओतो लेके। 50 वर्ष एक आदमी भैया

आप अपने माँ बाप को नहीं भूलोगे। और जो भूल गए हैं तो याद करना। जो गलत फैमिलियाँ हो गए हैं, मन मोटाई हो गए हैं, तो उसे दूर कर देना।

तेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ सर पर हाथ जो फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुराए तो जन्नत मिल जाए। तो कोशिश करना मेरे दोस्तों कि अपनी माँ बाप को जरा सदा सदा खुश रखे, ताकि माँ बाप खुश रहे और आपको आशीर्वाद दे, और वो आशीर्वाद भगवान से भी टाला नहीं जाता। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। और ऐसा भी है, माँ का आशीर्वाद, चाहे माँ जिंदा है या नहीं, अगर माँ कह दे कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तो वो हकीकत में है कि माँ का आशीर्वाद सदा साथ में होता है।

अल्लाह खूब फरमाए कि उसको नहीं देखा हमने कभी, तो सोचो माँ की सूरत। मेरी कलम से माँ शब्द, मेरी कलम से माँ शब्द का इतना सा सार है। माँ, माँ मेरे लिए।

हरिओम। एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार शाम का ये हसीन प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मॉडर्स डे स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूँ यारो। यही आशा उम्मीद है कि आज का ये मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जो सिलेक्शन मैंने बनाया है आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जी साल में हो, घर पे हो, या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो, या तो अपने परिवार के साथ मातृ दिवस मना रहे हो, अपने पूज्य माता जी के साथ, पिताजी के साथ और पूरी परिवार के साथ दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से दी रेक्सिलेड ओम रूपर्स मेड वर्कर्स की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी शुभ मातृ दिवस पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेबलिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान रखो फ्रेडा तेजस कंतोर उर अब दुफोल्ड टेलीफोन नंबर्स कंतोर 0703562247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 0703562277। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरगेट है उनसे क्वालिटी है गारंटी एंड नैचुरली नैचुरली नैचुरली फूलते से ऑलवेज लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो टॉक। हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुने जो खास करके हम लोगों का बहुत ही मशहूर अनाउंसर बहना दवान एंड ओनली रोज सीता गिरिजा सिंह जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। जिस तौर तरीके से रोज सीता बहन जी सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करती आ रही है, ये आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से रोज सीता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम के तरफ से एक हैप्पी हैप्पी मदर्स डे इन हेल फेन मुदला ओक फॉर यू और धन्यवाद। अगर आपके घर पे या सभी के घरों पे तो खुशी का दिन आज मनाया जा रहा है मदर्स डे है, तो आप सभी को हमारे फूल टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी मदर्स डे मुदला प्रकट है और आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक मनोए नेक इरादे अपने माता जी के साथ मिलकर आप जरूर मनाइए और आशीर्वाद जितना हो सके दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए माताओं के, वही पे तो है, उसी में तो सभी शक्ति है बंधु। नोहमास फूल टीम की तरफ से हम फैन मुदाफुल आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। ही फील्स डायरेक्टर मैथ्यू सिटी जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। एनी तो फिर खेत बंधु जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोग के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ बीतर्स का पैनोक फॉर यू
een hele fijne moederdag natuurlijk. Op de jaarbeurt om haar voetteam te treffen, tijd deel ze bedanja en vooral ga net zo door. Roze tijd, ik kan per se ja, als je op de jaarbeurt, toen je in takke koei baat nee, bandu morgen is weer een dag. Din pe din op jaar op er trouw door tot ze zelfvertrouwen beraten reina. Ook zat hij zat, koosjes jari rekna bandu mehnet. करते रहना हाँ देखो मेहनत तो है दौलत का यारी है यही तो बुजुर्गों ने कहा है एंड व्हाट वर्क ऑफ स्कूल डेज एंड ओवरऑल ऑफ योर वर्क बाय फ्रेंड हन हु मार अप हैव वर्क लेट एंड नोइट ऑफ नेवर गिव अप ब्रदर नगासीसा सोसोलो बिलो बियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर इट लुस्टरन एंड अलफास्ट एन हेले फाइन मदरडग फॉर यू ऑलमाल एंड Wees weet om haar voet in te treffen, zo zwaar, een fijne vakantie. Geniet ervan en blijf luisteren naar Fagon Hindustani Radio. U gaat het zeker leuk vinden en dat meen ik hoor. Oroze takke apen, disco, chorke, bidis, jatra pe jare, he he, ja, jatra pe hoto. Maar voet in te treffen, apen, bieg, soep, jatra, fijne vakantie. तमाम लोग सुनते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा अपने टैबलेट स्मार्टफोन और लैपटॉप तो आप भी सुनिए हम लोगों को ऑफ यू फकांसी एड्रेस सू मेंट यू एंड ब्लाइव टू फन अलस ऑफ द होक द फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाग शहर का द वन एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ इस इच्छा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ एड फिल्म ललकार 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदियों भी कहते रहेंगे कि हैव टू नास्ट आउट एज लीफ है डारफोर से मेन्स डारफोर रीफ कॉटन्स gestuurd op de wereld om van elkaar te houden en van elkaar ook te leren en van elkaar te genieten, elkaar lief te hebben. To mil jul ke hum log chalate hain yahan par aur aapko bhi ye baat hamesha dhyan mein rakhna chahiye. Hussein er for Eva pani ke bulbule ke tarah hum log aaye hain aur अपना जो छोटा सा रोल है ना उसे हम लोग अदा करके और फिर चले जाएंगे लीफ इस एंड्यूट मार ओसो कॉर्ट है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक आज थोड़ा मॉडल दाग स्पेशल है तो सरनामी संगीत बीच हम लोग अख्तर क्रम्थ हम पार पिकवेल से सेलेक्टेड En tussendoor veel Bollywood songs in verband met Moederdag natuurlijk. Beach me kuch gyan ke baate, sher shairi hai, to kul milakar hamara aur aapka saath takriban 8 baje raat tak chalega. To zarur program ko sunte rehna, maze lete rehna, Moederdag sabhi ke saath milkar manate rehna, aur program ko bhi sunte rehna. Ravi saab ji hamesha ki tarah.

0: गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत और भी रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज के साथ। फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 15 मिनट गुजरने वाला है 5 बजकर। तो आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, खास करके मॉडर्स डे स्पेशल का शुरुआत में करने वाला हूँ, खास करके दुनिया भर के सभी माताओं के लिए अन हेल फैन मुदर दाख, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि तमाम माताओं को सुखी रखे और उन्हें सभी दुखों से बचाए, और जितने माताओं का नेक इरादे हैं, नेक मनोकामनाएं, ये साल भी पूर्ण होते जाए। और माताओं में तो मेरे ख्याल से हम लोगों के धर्म ये कहता है कि दुर्गा माँ हम लोगों का सबसे बड़ा माँ है। तो हमारे इंटरनेशनल कलाकार सूरीनाम देश का रवानंद उंगली उस्ताद का उस्ताद श्री कृष्ण राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में ये अति सुंदर माँ दुर्गा का भजन आप सभी प्रिय प्रिय माताओं के नाम।
1: सिंह पे सवार

शुष्टरुकौस्ताय मनुष्यणां दीष्काम लोकदीष्का इंटरनेशनल कलाकार जिसपे मैं नांसी गर्भे वन एंड ओनली उस्तादुकास्ताद श्री पंडित कृष्ण राम खेलावन जी पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है। 19 मिनट गुजर चुका है 5 बजकर और मॉडर्स डे स्पेशल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अगला बयान द लायन ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड दी हेग सिटी द वन एंड ओनली मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल प्यारा सा भजन हमारे दुनिया भर के तमाम माताओं के लिए कि ले लो दुआएं माँ बाप की। मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ

0: Dabei the Lion of Beta Ghana from Holland, Den Haag's Jersey, the one and the only maestro. The Winter Sings, un magic and beautiful avance me, it is un trebian absolutamente servant che, or Hansker che, aaj ka ye jo haseen special di hai, matr divas ji ka jo hamare होलैंड देश में और पूरी दुनिया में लोग बड़े समारोह के साथ मना रहे हैं। अगला बयान है माँ के लिए, ये अति सुंदर बयान बनाया है और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को द किंग ऑफ बैठक गाना फ्रॉम होलैंड उस्तादों का उस्ताद संदीप बल्लू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये स्पेशल माँ और पिता के बारे में ये अति सुंदर बयान स्पेशल हमारी दुनिया भर के तमाम माताओं के नाम।
1: मनुष्य तन दुर्लभ है, मिले न बार बार, अगर मिल जाए इस जन्म में तो माँ बाप है आधार।

Parabéns, The King of Bait, Ghana from Holland to Stadokastad, Maestro Sandeep बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान है और खास करके दुनिया भर के तमाम माताओं के नाम ये भी शुभकामनाएं प्यार मोहब्बत और बेहतरीन तंदुरुस्ती के साथ

कुछ दुख के बात है कि बीते हुए दिन मशहूर संगीतकार खास करके गायक अनहील बकेंड सांगर एक सुरीनाम नीदरलैंड उस्ताद रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सबूर जी का मौत हो गया है। अपनी जिंदगी में वो ढेर सारे म्यूजिक फरमाइश के लिए गाए हैं, रफ़ी साहब जी के गाने अपनी ही आवाज़ में अपने ही अंदाज में हम लोगों को सुनाते थे। सुरीनाम में मशहूर सुहानी ऑर्केस्ट्रा के साथ कितने शोज दिए, त्रिनिदाद गयाना, और बाद में हॉलैंड देश आया तो मस्ताना ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोग भी एक दो शोज दिए जिसमें मुझे भी मौका मिला था उनके साथ गाने के लिए। बाद में चाहत म्यूजिक फरमाइशी के साथ हम लोग भी मिल के कितने शोज दिए। तो श्रीमान रेमी अब्दुल जी का जो मौत हो गया है, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से परिवार अब्दुल को हम लोग सुहानी भूति प्रदान करते हैं और उनके गमी में हम लोग शरीक है। और यहाँ से आप सुनेंगे भाई रेमी अब्दुल के मौत का समाचार। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश है कि ये खबर और लोगों तक पहुँचाने को

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़न।
0: दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को 79 साल की उम्र में इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएं पतो यानी सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानी क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानी आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में भी सुहानी ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और म्यूज़िक फॉर्मेट सी चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत का दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन ए नीर तो त्वेदक्स औद हाक वेख 28 दिन हाक शहर में, और भी मैयत का दीदार आप कर सकते हैं मानदक 11 मई 3 तो 11 यूर मस्जिद यानी मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद मैयत 12:30 बजे यानी हल्फ इन जनाजा पढ़ने के बाद हल्फ तुई न्यू एकन दोइनन कंपफुल इस्तरात के कब्रिस्तान में तजीर व तफीन किया जाएगा। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार 79 साल की उम्र में बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएं यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सत सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में नया जमाना ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और सुहानी ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिकांत था और साथ ही साथ म्यूजिक फॉर्मेट से चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत से दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन देर 3 यूर तो फिर 3 यूर औद हाक वेख अख्तन तुन तक दिन हाक में, और मैयत का दीदार भी आप कर सकते हैं सोमवार मानदक 11 मई को 10 से 11 बजे तक मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई होनत 3 पर है। उसके बाद 12:30 बजे यानि हलफीन जनाजा पढ़ने के बाद हलफ तुई न्यू एक एन दैन कम्पुर फुल इस्तरात में कब्रिस्तान में तजीद वर्तफीन किया जाएगा।

मालूमात के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-16-11-73-61 और एक तार और है 06-41-25-88-93। मैं दोहरा रहा हूँ 06-16-11-73-61 और 06-41-25-88-93। फाहुन हिंदुस्तानी सभी परिवार राम रामलखन और रिश्तेदार अब्दुल को यहाँ से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और मातम में शरीक है। सुनने वालों से निवेदन है और गुजारिश है कि ये खबर तक और आगे तक पहुँचा देने को। यहाँ तक था फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर रिश्तेदार अब्दुल का।

जब मुअज्जिन कहे तकबीर बसत इस दुनिया मेरी तुरबत हो मेरे वास्ते एक जाए नमाज सबके आगे हो खुदा मैं रहूं रहमत के करीब सबके आगे सब

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है साथियों, रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 20 मिनट रह गया है 6 बजने में और जोर तोर से मुडर दह का प्रोग्राम चल रहा है। यारो तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और अपने माता के साथ परिवार के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के साथ मिलकर हम लोग के साथ मदर्स डे आप मनाइए। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, एक भोजपुरी सॉन्ग है, महान गायक हमारे बिहार का झगड़े पवन सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए और अपने पूज्य माता जी को याद कीजिए या तो उनके करीब बैठ कर और ये अति सुंदर बयान को सुनिए।

Можеш тільки у плечі макіє мені є. Beautiful songs को चुना है खास करके आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम जो अपने पूज्य माता जी के साथ परिवार लोगों के साथ मिलकर ये माँ के त्यौहार मुदरदाह मातृ दिवस को मना रहे हैं। जन्म जन्म अति सुंदर बयान अतीफ असलम जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज एंड अरेंज बाय प्रीतम चक्रवर्ती। सभी प्रिय प्रिय माताओं के नाम

जन्म जन्म का बंधन होते हैं, ये बंधन होते हैं माँ और एक बच्चे का ना। तो मदर डे स्पेशल में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना बाय अतीफ असलम। 10 मिनट रह गया है साथियों 6 बजने में। अगला बयान खास करके स्पेशल मदर्स डे के उपलक्ष्य में ये अति सुंदर बयान कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम 3 मई मुदर दख का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। स्टूडियो की तरफ में आ रहा तो धूप निकला था तकरीबन 14-15 डिग्री का दरमियान था, तो आप सभी को हमारे फूल टीम की तरफ से एंड hele fijne moederdag toegewenst namens onze directie, leden, alle omroepers en medewerkers. Happy, happy Mother's Day to all of you en natuurlijk voor alle moeders. En mijn full team, ik trouwens je absoluut aankwijbaar. Vierzij, schwagen, tam. Gerdik je erop dicht aan, to 1 minuut, wie heet het, hoor. चला है छे बचकर आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर देना शहर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबरें इश्तिहारे दिन कन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। हो सकता है कि आप एक व्यापार हो या तो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर शोमैन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात अब मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम सुनते रहते हैं इंटरनेट के लहर द्वारा वर्ल्ड वाइड एंड लंदलक ओक नचीलक किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंटोर उर फन मांडा टू फ्रेडा ऑफ द फॉल्कन टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-365-2077। तो जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, थोड़ा बहुत रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हो सके तो थोड़ा ढंढोड़ा भी पीट देना। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzaris bent u niet meer een keer jaar hai. Kia bi jilt si jilt Fahun Hindustani Radio ka member bane au roko bhi banai. Aap logo ko to dheer sare faida hi faida hai. Recent hebben we onze eigen karaoke team van Fahun Hindustani Radio waar heel veel omroepers live voor ons en voor u willen zingen. Volg onze social media's en omroepers, dan hoort u heel gauw waar wij binnenkort live voor u gaan optreden. En natuurlijk bent u van harte welkom. Abhi jalt si jalt, hum logo ka jo ye chota aur mota sa faun Hindustani radio ka parivar ban chuka hai aur bante ja rahe hai, aap bhi aakar usme shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap tar kare op 07-365-2247 en vraag naar onze teamleider, the one and the only maestro, Johnny Number One. Waar ik in moet hebben gekeken, dan wil ik er zelf een programma op terug. Je hoort door zijn Mother's Day special te rijden. En ik heb ook een select gedaan, deze 3 uur programma. Gaas kerke दुनिया भर के सभी माताओं के लिए अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग दिल को छू लेने वाला नगमा। ओ माँ तुझे सलाम, जितने हम लोग सलाम करें माताओं को कम है यार, क्योंकि माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। और
बुजुर्गों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कहा है तो माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग लोग है, जन्नत है, ऑन थाउर इथ दिस प्रोबेयर सो फिर सीखने फया मुदर तक रहे हैं ऑन थाउर इथ दार सित द प्यूर क्रख्त माँ तुझे सलाम। Maestro Jagjit Singh.

ओ माँ तुझे सलाम, और जितने सलाम हम लोग करें माताओं को कम है। साथियों, अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और एक अति सुंदर मदर्स डे स्पेशल तैयार करके मैं लाया हूँ। ये उम्मीद लेकर कि आज का ये मदर्स डे का जो स्पेशल सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, आप सभी को जरूर पसंद आते होंगे। अगला बयान है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, क्या बात है, दिल को छू लेने वाला नगमा हमारे सभी माताओं के नाम।

तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, क्या बात है दिल को छू लेने वाला, माँ और बच्चे के प्यार में। ये अति सुंदर बयान आप सुने, खास करके महान गायक डिग्रेट कुमार सानू और ये अति सुंदर सुंदर नगमे जो मैं चुना हूँ। और ये चल रहे हैं हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से के बड़े स्टूडियो से। आप सभी जो इस वक्त अपने माँ के साथ, परिवार के साथ मिलकर मुदरदाह मातृ दिवस को मना रहे हैं, एक से एक ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैंने चुना हूँ आज के इस हसीन प्रोग्राम में सुनाने के लिए। अगला बयान एक बार फिर कुमार सानू और साधना सरगम मिल के सुनाते हैं। फूल जैसी मुस्कान, एक बच्चे और माँ का प्यार का ये ब्यूटीफुल बयान आप सुनिए।

ब्यूटीफुल सॉन्ग फूल जैसी मुस्कान और तू बनेंगे पहचान मेरी ये भा, अति सुंदर बयान एक माँ और बच्चे के प्यार में जो प्यार होता है ना, जो ताकत होते हैं, क्रख्त होते हैं, वो ज़रूर अपने पूज्य माता जी से कोशिश कीजिए पाने को, वही में सफलता है बंधु। अगला बयान घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 6:30 बजने वाला है, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर धनहाक्षर का हैप्पी हैप्पी स्टेशन, जनता का आवाज, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज आप सुन रहे हैं और खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष में ये स्पेशल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं यारो, जबरदस्त गाने वाले रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम मिलके इतनी सुंदर नगमे को गाए हैं जो मैं आप श्रोताओं को खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष में पेश करता हूँ। आप सभी प्रिय प्रिय माताओं के नाम, बच्चों के नाम,

Die voelen zongen, maar tredieweske oplechme je ati sunder beana pe shrutauni suna. Aur ye bhi khas karke faun hindustani radio ke madhyam se aur hamare tamam mataon ko ek shubh aur fine moederdag pesh hai hamare full team ke taraf se. हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. 3 मई 2020 का ये स्पेशल डे मॉडर्स डे का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. 6 मिनट गुजर चुका है 6:30 बजकर, तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर लोगों ने जिंदगानी के बारे में अति सुंदर सुंदर बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ. ये अशोमी लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे, तो जरा गौर फरमाएं. अर्ज किया है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था, चाइनी देश का, खबोर रोंत 479 en overleden rond 551 voor Christus. Dus een hele oude tijd. Ka insan ke kuch gyan ke baatein aap sunenge. Sri Confucius. Hij was een Chinees filosoof. श्री कॉन्फ्यूशियस ने कहा है जिंदगी के बारे में साथियों की, द वेख सेल्फ इज योर बेस्टेमिंग. आगे में कहा श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने, कुंट यू फेम नीट फरसलान स्लाइट दन फ्रीड मेथ हेम. एन हेले गुयो है, दी नीट कान लखन मुत गीन विंकल बिगिनन. उन्थाउ दात. Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk. Wie de baas is over zichzelf, hoeft zich niet te meten met anderen. Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis. Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid. Als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed. Het is goed openhartig naar anderen te zijn, maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn. En als het mogelijk is, moet je respectvolle en aardige woorden gebruiken. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. De laatste van vanavond. Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding. En zonder die voorbereiding is falen een feit. Klopt als een bus hoor. Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding. En zonder die voorbereiding is falen een feit. Remember that. तो साथियों, अभी आप कुछ ज्ञान के बातें सुना जो जिंदगी के बारे में जाता है. ये अश्वमेध लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ हम लोग तो हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे.
20 मिनट रह गया है साथियों साथ बजने में, अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, खास करके मॉडल दी स्पेशल जो चल रहे हैं। ये अति सुंदर बयान सभी माताओं के नाम।

माँ ये कह रही थी महान गाने वाली अलका याग्निक जी, खास करके आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के लिए मात्र दिवस के उपलक्ष पर 15 मिनट रह गया है 7:07 साथियों, जोर तोर से मदर्स डे स्पेशल चल रहा है और ये भी खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से तमाम माताओं को हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। एक जबरदस्त सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं और जबरदस्त गायक बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के ऊपर चले गए अपनी पूज्य माता के लिए। और देखा जाए कृष्ण कुमार कुणाल मिस्टर के ब्यूटीफुल आवाज में, उन्हीं के याद में इतनी सुंदर बयान आप सुनेंगे। कंपोनेट और महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट प्रीतम इरशाद कमिल के अल्फाजे आए और मेरी माँ के अल्फाजे आप सुनिए। कॉम्ट रेक्ट स्ट्रीक्स आउट द हार्ट फन द वन एंड ओनली लेट द ग्रेट KK.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 3 मई 2026 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम, मोडर्स डे का ये हसीन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 1 मिनट गुजर चुका है 7:07 साथियों, हमारे फूड टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी मॉडर्स डे natuurlijk sussulobilobi on blessings to all of you and natuurlijk bedankt voor het luisteren hè. हमारे फूड टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नैतिक वर्क्स बॉयस एंड गर्ल ओक फॉर यू ओक नैतिक एंड हेल फैगने मूदरदाह। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, शोमैन हो जो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम को सुनते रहते हैं लंदलिक एंड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इंटरनेट के लहर द्वारा। सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना हम लोग का मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहता आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल टेनिस कंटोर यूरोप मांडा टॉट फ्रेडा ऑप द फॉलगंड टेलीफोन नंबर्स कंटोर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना साथियों, चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। और नैतिक साम वर्किंग बैंक तीनों के लिए फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने औरों को भी बनाए। आप लोगों को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। रिसेंट है वो ओक ओंस एगे कराओक टीम क्लबje opgericht met heel veel omroepers die live ook zingen. Dus volg onze social media's en onze omroepers, dan hoort u zeer zeker waar wij binnenkort live voor u kan zingen. Natuurlijk bent u dan van harte welkom. In de voorbereiding waar ik moet ik ik hier dan bertje hey program kiterf kritis onder Mother Day special के उपलक्ष में नगमा रख चुका हूँ आप सभी को सुनाने को, और लाते हैं मेरी माँ वैभव पांडवर के आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग वैभव पंद्वार के आवाज में आप सुना। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को, और ये भी खास करके मदर्स डे स्पेशल जो चल रहे हैं उन्हीं में से ये एक नगमा और है, एक तमन्ना माँ है मेरी, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग ये देखा जाए सौरभ माधुकर के आवाज में।

बयान सौरव मधुकर के आवाज में। 15 मिनट गुजरने वाला है, 7 बजकर साथियों, और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन पर हमारे दिनाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस टबलाइस्ट्रोफिया इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, इस जमाने के मशहूर गाने वाला द ग्रेट जुबिन नौटियाल जी।

नवत्याल और ये भी खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में 18 मिनट गुजर चुका है साथियों, 7:00 और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन धनहाशर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और जोर जोर से स्पेशल चल रहा है खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में। अगला बयान किशोर दा को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं ये जबरदस्त माँ के गाना कि कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ तो मिल जाता है बंधु, परंतु माँ नहीं मिलती।

बात है, दिल को छू कर और हिला कर रख दिया ये अति सुंदर बयान, खास करके माँ और बेटे का रिश्ता के बारे में डगड़े पंकज दा के ब्यूटीफुल आवाज में। और ये भी स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के तरफ से दुनिया भर के तमाम माताओं के नाम। वक्त हो गया है कुछ शेर शायरी हो जाए ना, और खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ शेर्स लेकर आया हूँ खास करके माताओं के लिए। अर्ज किया है साथियों, भाई भूपेंद्र जी जो सभी अपने पूज्य माता जी के लिए लिखा था और मेरे लिए भी कुछ भेजा है, और बड़े प्यार से कहा कि अपने तमाम श्रोताओं को सुना देना भाई सुरेंद्र जी। थैंक यू भाई भूपेंद्र जी, और वो बहुत ही प्यार से मैं कोशिश करूंगा सुनाने को, क्योंकि माँ के शेर से ना, और माँ माँ तो माँ होते हैं यारो। तेरे बिना मैं ये दुनिया छोड़ तो दूं, तेरे बिना मैं ये दुनिया छोड़ तो दूं, पर उसका दिल कैसे दुखा दूं जो रोज दरवाजे पर खड़ी कहती है बेटा घर जल्दी आ जाना, वही तो माँ होते हैं। माँ तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ, थक गया हूँ मुझे अपने आंचल में सुलाओ, उंगलियां अपनी फेर कर बालों में मेरे एक बार फिर से बचपन की लोरियां सुनाओ। माँ पहले आंसू आते हैं, माँ पहले आंसू आते हैं, और तुम याद आती थी, माँ पहले आंसू आते थे और तुम याद आती थी, आज तू याद आती है और आंसू निकल आते हैं, ओ मेरी माँ। माँ तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा बुखार या सर्दी में तड़पता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता, ये मत होने देना कभी बंधु। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में माँ के पुजारियों, थक गया हूँ रोटी के पीछे भाग भाग कर, थक गया हूँ रोटी के पीछे भाग भाग कर, थक गया हूँ सोती रातों में जाग जाग कर, काश मिल जाए वही बीता हुआ बचपन जब माँ खिलाती थी भाग भाग कर और सुलाती थी जाग जाग कर। द्विता कुछ माँ के शेयर्स। अगला बयान जबरदस्त माँ का प्यार सा भरा हुआ ये नगमा है, और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को महान गायक डिग्रेट मोहम्मद अजीज जी फ्रॉम द मूवी माँ 1981।

क्या बात है, जितने अल्फाज आप सुने सभी में कितना सच्चाई छुपा है ना, कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर नहीं कोई दूजा। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है साथियों, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान नेहा कक्कर के ब्यूटीफुल आवाज में ऑन दिस मदर्स डे स्पेशल 2020 खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से।

0: मम्मा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ. थैंक यू सो मच. आई लव यू
1: मम्मा. क्या बात है, खुद रोती है और हम लोगों को भी यहाँ रोवा देती है स्टूडियो में. यह बुरा हाल हो गया मेरा, बिकॉज माँ तो माँ होती है ना. तो साथियों, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में का आखिरी बयान आप सुनेंगे. और जरा दिल को थाम लेना, क्योंकि इतना दर्द है इस गाने में कि मैं सीकर रो पड़ूंगा और शायद आप घर पे भी, क्योंकि माँ ये सब में इतना ताकत है, इतना महानता है कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं. ये सुनाने को जा रही है आप सभी को महान गायक, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, इस जमाने का द ग्रेट सिंगर अरिजीत सिंह जी का सुपरहिट बिग हिट सॉन्ग माई तेरी चुनरिया. और जिस खूबी से, जिस अदा से और जिस काबिलियत से ये गाना बनाया गया, क्या बात है, जितने तारीफ किया जाए कम है, कम है, कम है, क्योंकि माँ तो माँ होते हैं यार वो.

क्या बात है माएस्ट्रो अरिजीत सिंह जी के ब्यूटीफुल ग्रेट ग्रेट ग्रेट आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आज के यह हसीन कार्यक्रम में जो खास करके सभी माताओं के नाम पे मैंने चलाया, साथियों वह भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं हमारे प्रिय प्रिय श्रोतागणों की, जिस तौतरिक समय कोशिश की आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये यश उम्मीद है कि आज का मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। खास करके मॉडर्स डे स्पेशल के उपलक्ष में मैंने ये प्रोग्राम को पेश किया। हमारे बात आप सुनेंगे हम लोगों का बहना श्रीमती शांता बहन जी को, वो आगे के प्रोग्राम को चलाएगी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मॉडर्स डे ही हैगा और जितने हो सके अपने परिवार के साथ माता के साथ ये शुभ त्यौहार को मनाते रहना। मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मैं भी अब घर पे जा रहा हूँ अपने पत्नी के साथ। थोड़ा बहुत मुदर दाख तो सवेरे हम लोग मना ही चुके लहली, अब रात के प्रवेश तक से कुछ खाना पीना के साथ हम लोग भी मनावा जाए ना। तो यही थकता आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम।

मर्यादा के मुताबिक तो जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ आप सभी के खिदमत में। तो आज ये माता पिता के कुछ भजन है, एक अति सुंदर कोशिश करता हूँ।

है ना सुंदर गीत किशोरदा जी की आवाज में कि प्यार बांटते चलो, अवश्य अवश्य प्यार बांटना ही चाहिए। आपके लिए गुजारिश हुआ गीत, एक बार फिर यहाँ से हम चला देते हैं।

फिल्म ब्लफ मास्टर से सुने हमें मुकेश जी के आवाज में कि सोचा था प्यार हम ना करेंगे पर हो गया, क्या करे, ये खास फरमाइश हम यहाँ से सुनेंगे।

फिल्म भाभी से निकाल दिया गया है। नेहकंतीन 75 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी के आवाज में। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ प्रार्थना तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए है। तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुराने के लिए है। अब तो मेरी जान तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। अब तो मेरी जान मेरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। इस बार है मोहम्मद रफ़ी जी एक बार फिर। आई गो ये क्या हो गया।

हेमंत कुमार जी की आवाज़ में है। फिल्म का नाम ब्लफ मास्टर, और ब्लफ मास्टर ये फिल्म नेहन तीन द्रियन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है।

फिल्म धूल का फूल से सुने हम कि धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, देखते नेक नफे तक में ये पिक्चर।

तुमने इंतजार ना किया फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। मोहम्मद रफी जी की आवाज में, फिल्म का नाम दुनिया।

0: हाँ बता दो, याद रखोगे कि भूल जाओगे, लता जी के आवाज में।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

मेरे हमदम मेरे करीब आओ, और उससे पहले हम सुने उलझन सुलझना, सुना दी हमको आशा भोसले जी, फिल्म का नाम ढूंढ, फिल्म का नाम ढूंढ, नेखन तीन द्रियों से फंतख में ये पिक्चराइज किया गया है। मंजिलों का इंतजार नहीं, मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए, हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हे के बीच की, दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए। हंसते हंसते गाते जीते, हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। बहुत बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, उस रब का शुक्र अदा कीजिए। रोते रोते रहे जाने कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। वाखनित ऑफ द बेस्ट टाइमिंग, वाखनित ऑफ द बेस्ट टाइमिंग, खनित फान द रेस, खनित फान द रेस, फर न्यू योरसेल्फ विद एलक फॉर बे खांत मोमेंट, खनित फर न्यू ए खनित new yourself met elk voorbijgaand moment, geniet van elk moment tussen twee momenten, vind alle redenen om een gelukkig leven te leiden. Het leven wordt ons met grote moeite geschonken, God zij dank. Er zal niets veranderen als je blijft huilen, er zal niets veranderen als je blijft huilen, maar

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

गीता का सार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया।

जो लिया तुमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन परिवर्तन

शिवदास जी की आवाज में, येसुदास जी की आवाज में फिल्म का नाम एक बार कहो, फिल्म का नाम एक बार कहो। नेखन तीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया।

और मुस्कान, मौन यानी कि चुप और मुस्कान यानी कि खलिमलाख। इसमें फर्क क्या है? What is that verschil? मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। तो मुस्कान से, एक मीठी मुस्कान से कई, एक मीठी मुस्कान से कई

ये दुनिया अगर मिल जाए तो आप ही बताओ आपको क्या चाहिए। फिल्म प्यासा से ये सुंदर सा गीत रफी जी की आवाज में। पत्थर की है दुनिया, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तन्हा तो चांद भी है, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर चांद का दर्द, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती।

ये जिंदगी क्या है, रफी साहब की आवाज में दिल दिल को टटोल देते हैं ये सुंदर सुंदर गीत। माय गॉड, इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। इंसानियत इंसान

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8। फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

धुन से तो आपको मालूम हो गया है। माँ तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, माँ निराली है, माँ प्यारी है। मातृ दिवस के उपलक्ष पर आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मातृ दिवस के उपहार पेश किया जाता है।

मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की मुझे, लेकिन माँ की दुआएं में असर बहुत है, लेकिन माँ के दुआओं में असर बहुत है।

माँ का धरती माँ से सवाल, एक माँ का धरती माँ से सवाल। एक माँ ने धरती माँ से कहा कि तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे हकदार सदा करते तेरी रखवाली है, तेरे हकदार सदा करते तेरे रखवाली है। बंजर बंजर होने पर भी लोग तुझे पाने को तरसते हैं, बंजर होने पर भी तुझे लोग पाने को तरसते हैं, तेरे लिए भाई भाई भी कट मरते हैं। मुझसे क्यों हर कोई पीछा छुड़वाता है, बुढ़ापे के दहलीज लांघते ही क्यों हर कोई मुझको आँख दिखाते हैं। माना हाथ पैर कमज़ोर पड़ गई, पर मैंने भी बहुत कमाया था, जो ठुकराते हैं आज मुझको उनके लिए सुख चैन अपना गंवाया था।

0: गिन लेती है माँ, गिन लेती है दिन बगैर मेरे गुजारे हैं कितने, गिन लेते हैं दिन बगैर मेरे गुजारे हैं कितने, भला कैसे कह दूँ कि मेरे माँ अनपढ़ है। जब दवा काम नहीं आती तब माँ की दुआ काम आती है। मैन इश्त कामर द बार मुदर फॉर माई मुदर, मैन इश्त रेस्टोरेंट द बोर्स फॉर माई मुदर, द इश्त टॉयलेट द स्कोट फॉर माई मुदर, द इश्त स्कूल द कुकन फॉर माई मुदर, द इश्त लेरार द इश्त लेरार माई मुदर, मैन इश्त डॉक्टर इस माई मुदर, मैन इश्त थर्मोमीटर द फिंगर्स फॉर माई मुदर, मैन इश्त फ्रेंड इस माई मुदर, मैन इश्त फुर्तुग माई मुदर, लॉन्ग लाइफ मामा आल्स नोग लीव आल्स नीट मेयर इन लीवन इस ओम शांति। माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही होता है।
1: माँ जीवन देती है, जीना सिखाती है, माँ ज्ञान देती है, आचरण सिखाती है, माँ भोजन देती है, निवाला खिलाती है, माँ लोरी देती है, निंदिया दिलाती है, माँ आंचल है, सरल है, ममता का रूप है, सागर है, त्याग का, विश्वास का गगन है। जन्म देने वाली को माँ कहते हैं, पर बहुओं को बेटी मानने वाली को भी माँ ही कहते हैं। सासू माँ की बुराई हमेशा सुनते हैं, पर इस समाज में सबके लिए उदाहरण है ये सासू माँ, जिसने अपनी बहुओं को हमेशा बेटियों की तरह रखा है।

रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल छू जाते हैं। ये सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, मातृ दिवस के उपहार आपके लिए पेश किया जाता है।

ओ माँ, रितेश तिवारी की आवाज़ में यहाँ हमने सुने हैं। ओ माँ, ओ माँ, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन एक औलाद की तकलीफ से माँ टूट जाती है। जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ ही है। एक बच्चा कहते हैं कि मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता।

0: जरूर से आपकी माँ हो तो जरूर से कह देना कि आई लव यू मेरी माँ। अगर नहीं भी हो तो आप मन ही मन में, दिल ही दिल में भी कह दो कि आई लव यू मेरी माँ, क्योंकि माँ के होने से आज हम हैं। जिनके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिनके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मैं ऊपर वाला से पहली मेरी माँ को जानता हूँ। जी हाँ, माँ को हम पहले जानते हैं, फिर हम संसार को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, मानते हैं। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ हर पूरी मन्नत होती है, माँ के पैरों में तो ही वो जन्नत होती है। माँ माँ सबकी जगह ले लेती है, माँ सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह, जी हाँ, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। खुद मौत के मुंह में जाकर बच्चे को जीवन दान दे, ऐसा है वो शक्तिशाली माँ जो इतना महान काम कर दे।
1: सॉरी

के लिए प्यार, माँ के लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर तक ये रहती है। माँ ने तो उम्र भर संभाला ही था, माँ ने तो उम्र भर संभाला ही था, हमें तो ज़िंदगी ने रुलाया है। कहाँ से पड़ती कांटों की आदत हमें, माँ ने हमेशा अपनी गोद में सुलाया है। खुद मौत के मुंह में जाकर बच्चे को जन्म दान दे, ऐसा है वो शक्तिशाली माँ जो इतना महान काम कर दे। एक हस्ती है जो जान है मेरी, एक हस्ती है जो जान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी, वो कोई और नहीं माँ है मेरी।

शरीर छोड़ जाने वाले तो वापस नहीं आते हैं, उनकी यादें तो ज़रूर से रहते हैं। उन यादों को हम दिल में समेट कर याद कर लेते हैं। मातृ दिवस के ये उपहार आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मातृ दिवस पर आप सभी को हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है। माँ के प्यार का बदला इस जन्म में तो क्या, अगर हजार जन्म भी लो तो उतार नहीं सकता। माँ के बगैर घर सुना होती है और बाप के बगैर जिंदगी। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप के दिल ना जीते, पूरी दुनिया जीत कर अगर माँ बाप के दिल ना जीता तो वो हार के समान है।

माँ के दिल को समझना है थोड़ा सा मुश्किल, माँ के दिल को समझना है थोड़ा सा मुश्किल, चाहे सुख दे या दुख दे बच्चा, रहे हर सॉल्यूशन में शामिल। मेरे सिर पर माँ के हाथ है, मेरे सिर पर माँ के हाथ है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन खिलाफ है।

0: माँ मेरी माँ तेरा है शुक्रिया, आपको दिल से धन्यवाद दिया जाता है माँ के प्रति। मेरे सिर पर माँ के हाथ है, फर्क नहीं पड़ता कौन खिलाफ है। मातृ दिवस स्पेशल आपके लिए बनाया सजाया गया है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, आपको ढेर सारा प्यार मिले।
1: हम हैं जॉनी नंबर वन, और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे, तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

पर्सन आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे हैं, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुपरमनियम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और मैना भी आपको, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आपको कैसे भूलेगा। हमारी यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे हैं हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव टू के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सांवरिया, मनाए तेरा सांवरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सनी देओल अमृता सिंह का और नचिकेत लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंद तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर जोकर, तो आओ मिल करे सुना जाए।

और जाने कहाँ गए वो दिन, फिल्म के नाम है मेरा नाम जोकर निकलने वालों से फटका ये फिल्म है दोस्तों। माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है। ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों के बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा, मूवी का नाम है नागिन।

पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोन है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोन है।

और अल्लाह तो सबको जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है, मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते हैं तदलुत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे। आशा परीख सुनील लतीश ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ चल रही कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

कौन मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिकी लता जी का ये जोंग थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निखती होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमाश श्री मोहम्मद रफी और नैतिकी लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

हेमोफी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाश्री मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग, मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं। और ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में, बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी, आप बता दीजिए। मुझे इतना प्यार है और किससे, ये आप भी मुझसे बताइए।